0: of them. Stardust Illuminator. Stardust Illuminator.
1: Tamil, Tamil, Tamil. I can't pronounce this word.
2: दोस्त एक बात बता, हाउ डू यू प्रोनाउंस
3: TAMIL? मुझे नहीं आता वो बोलने यार।
4: तमिल
3: कुछ तो बोलते
5: हैं। तमिल लोग बोलते हैं, या तो तमिल बोलते हैं या तो तमिल बोलते हैं, तो आइडियली शुड बी तमिल।
6: द फॉलोइंग साउंड एक्सपेरिमेंट्स वर रिकॉर्डेड ऑन वेडनेसडे मार्च 08.